0: fréquence 7, tu l'allumes. Ça fout la trouille. C'est décalé, c'est pas pareil, c'est différent.
1: Oui.
0: T'es là, t'écoutes la musique, ça te fout la trouille.
1: Oui, mais j'aime ça.
0: Ah oui, c'est pour ça. T'aimes ça, hein.
1: Oh oui.
0: Ah bah, je t'en remets du fréquence 7.
1: Oui, vas-y.
0: Voilà.
2: सरस सरस गायना जे छे ने ए मारा भाईबन विंसन फ्रांस ने बनायो अने आ पे मोटो लांबो टोकड़ी वाला है एने पण ए पकाशन मा बजायो एक दो तीन चार